0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in Multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing-walong taong gulang, o naging isang mamayan ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Otorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφος σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in Multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗? 联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满 18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
6: 98.5 FM.
0: Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2082, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 22 मार्च 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. अवैध जुए और सट्टेबाजी पर सरकार का बड़ा एक्शन. 300 वेबसाइट और बेटिंग ऐप्स को किया ब्लॉक. पीएम मोदी ने देशवासियों को दी चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की शुभकामनाएं. अब बढ़ेंगी पीएफ की न्यूनतम पेंशन. भारत का बड़ा फैसला, रूस से भी खरीदेगा एलपीजी. एमईए ने बताया कि 9000 से ज्यादा भारतीय थे ईरान में. शिवालिक के बाद भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज. 9,27,012 टन एलपीजी से मिलेगी बड़ी राहत. अब सुनिए समाचार विस्तार से. ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. खबरों के अनुसार सरकार ने अवैध जुआ और सट्टेबाजी की वेबसाइट के खिलाफ एक बड़े अभियान के तहत ऐसी 300 वेबसाइट और एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है. सरकार ने यह कार्रवाई खासतौर पर युवाओं को आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाने के मकसद से की गई है. अब तक ऐसी लगभग 8,400 वेबसाइट को ब्लॉक किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम पारित होने के बाद ब्लॉक की गई हैं. ब्लॉक की गई वेबसाइट और ऐप ऑनलाइन स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी मंच, ऑनलाइन कैसीनो और सट्टा बाजारों की तरह काम करने वाले बेटिंग एक्सचेंज से संबंधित हैं. सट्टा मटका जुआ नेटवर्क और रियल मनी कार्ड एवं कैसीनो गेम ऐप पर भी कार्रवाई की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर के शुभ अवसर पर देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और समृद्धि से भरे वर्ष तथा राष्ट्रीय प्रगति के प्रति नए संकल्प की कामना की. नव संवत्सर के अत्यंत विशेष अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की कि आने वाला नव वर्ष प्रत्येक के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सेवा की भावना को मजबूत करे. मोदी ने उम्मीद जताई कि ये मूल्य राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए जा रहे सामूहिक प्रयासों को नई गति प्रदान करेंगे और साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों के लिए असीम सुख, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन बढ़ाने की मांग अब पूरी होते दिख रही है. दरअसल श्रम पर स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है. वर्तमान में पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह दी जा रही है. माना जा रहा है कि यह पेंशन वर्तमान से 3 गुना तक की जा सकती है. समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा है कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन

0: आज के समय में अपर्याप्त और गरिमाहीन है। बताया जा रहा है कि पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने का सुझाव दिया गया है। भारत ने साफ किया है कि वह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के हर संभावित विकल्प पर विचार कर रहा है। विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत जहां भी एलपीजी उपलब्ध होगी वहां से खरीदने की कोशिश करेगा, चाहे वह रूस ही क्यों न हो। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को के बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि सभी लोग दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराते, इसलिए सटीक संख्या बताना मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि अनुमान के अनुसार करीब 9011 भारतीय ईरान में थे, लेकिन हमले शुरू होने से पहले ही कई छात्र वापस लौट चुके थे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,57,740 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 94.05 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 65.80 रुपए। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं।
1: दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम दर्पण, और मैं हूं आपका मेजबान प्रदीप उपाध्याय संजीव शर्मा जी के साथ। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी सूचना साझा करना चाहूँगा। आमतौर पर हम आपसे लाइव जुड़ते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पिछले कुछ सप्ताह हम लोग रिकॉर्डेड कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज का कार्यक्रम भी ऐसा ही है। आशा करते हैं जल्द ही समस्या का निदान होगा और हम हमेशा की तरह आपसे लाइव जुड़ेंगे। जो भी हो, हमारे जज्बात, हमारा प्यार और आपके लिए हमारी प्रस्तुति हमेशा की तरह दिल से आ रही है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव। और अब बात करते हैं इस समय के सबसे पावन और ऊर्जावान पर्व की, नवरात्रि। नवरात्रि यानी 9 रातों का उत्सव, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व। यह सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम अपने अंदर एक नकारात्मकता को दूर कर नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। हर दिन माँ के लिए एक नए रूप की पूजा होती है जो हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश देती है। इस पावन अवसर पर हम भी आपके लिए लेकर आए हैं खास प्रस्तुति, जहां होगी सुरों की मिठास, हिंदी की बेहतरीन झलकियां और कुछ प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपके दिल को और खास बना देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ पलों में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक से एक बढ़कर शानदार गीत, दिलचस्प बातें और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा। और कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं एक सुंदर से विचार के साथ। हमेशा की तरह आजकल अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध सुर्खियों में है और इसने पूरे विश्व को, भले ही वो इस युद्ध में भाग न ले रहे हों, तटस्थ भूमिका में हों, लेकिन सबके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा है और सब लोग शांति की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक पुराना कोटेशन याद आता है जो अंग्रेजी में है, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। और शायद आज हमें इस कोटेशन का अर्थ सही मायने में समझ में आ रहा है कि यह युद्ध लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, अन्यथा जो युद्ध से प्रभावित हैं उनका तो बुरा हाल है ही, लेकिन जो तटस्थ हैं वो लोग भी इससे अछूते न रह पाएंगे। आशा करते हैं परिस्थितियां सुधरेंगी और समय के साथ हम बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। तो ये था आज का विचार और अब सुनते हैं नवरात्रि के पर्व पर एक सुंदर सी भजन की प्रस्तुति।

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।

0: थोड़ी सी बात फिल्मी दुनिया की करते हैं। तो आपको मैं दो फिल्मों के नाम बताता हूँ। दोनों ही प्रसिद्ध फिल्में अपने ज़माने की हिट पिक्चर रही हैं। एक पिक्चर थी तीसरी कसम और दूसरी गाइड। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों फिल्मों में क्या समानता है, तो आप शायद यही बता पाएंगे कि दोनों 60 के दशक की हिट फिल्में थी। इससे अधिक और समानता इसमें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक इनमें खास बात है जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, और उसी के लिए एक ऑडियो फीचर भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये दोनों ही पिक्चरें एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकारों द्वारा लिखी गई थी। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई थी, वहीं गाइड आर के नारायण के प्रसिद्ध नावल पर आधारित थी। दोनों ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, प्रतिष्ठित थे, और दोनों ही पिक्चरें दुखांत थीं। तो इनकी कहानी का अंत दुखद होता है। तो फिल्म समीक्षकों ने जब पिक्चरें बनाई जा रही थी तो निर्माताओं को सलाह दी थी कि इनका अंत जो है बदल दिया जाए, ताकि ये फिल्में सुखांत हों, ताकि दर्शक इसको पसंद कर सकें। और यह बात जब लेखकों से साझा की गई तो लेखकों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारी कहानी जैसी है वैसी की वैसी आपको लेनी होगी। और अंततः ये पिक्चरें मूल कहानी पर आधारित बिना कोई परिवर्तन किए हुए बनी। गाइड में एक खास बात और है कि ये जो नावल लिखा गया था आर के नारायण द्वारा, इन्होंने जब शुरू में अपना जो नावल लिखा था उस समय यह एक दुखांत नहीं था। उसमें जो राजू गाइड है उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अपने खास दोस्त के कहने पर ऐसा किया था और उसका परिवर्तन किया था, और कालांतर में यह चल के एक सफल उपन्यास भी बना और उस पर एक सफल फिल्म भी बनी। तो यही यह किस किन परिस्थितियों में यह अंत का परिवर्तन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, इसी के लिए एक ऑडियो फीचर आपके साथ लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि हमारे सिनेमा प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों को यह पसंद आएगा।
1: अगर लंदन में बैठे उस बड़े राइटर ने एक अजनबी इंडियन की अनपब्लिश नॉवेल नहीं पढ़ी होती तो दुनिया को एक बड़ा राइटर नहीं मिलता। किस्सा है इंसानों की समझे सबसे खूबसूरत रिश्ते की, किस्सा है दोस्ती का, किस्सा है दो दोस्तों का जो जीवन में सिर्फ एक बार मिले और वो एक बार मिलना भी गजब की कहानी दे गया, ये लास्ट में बताऊंगा। 1930s का इंडिया है, रसीपुरम कृष्णस्वामी कहानियां लिखता है अंग्रेजी में। ये अलग बात है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो इंग्लिश में ही फेल हो गया। कोई भी रसीपुरम को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा था, सब कह रहे थे कि उसकी कहानियां बहुत सिंपल है। सारे पब्लिशर उसे बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, पर रसीपुरम को अपनी बनाई दुनिया पर, अपनी लिखी कहानियों पर बहुत भरोसा था। एक राइटर को दुनिया से पहले पता होता है कि दुनिया को किस कहानी की जरूरत है। उसका एक दोस्त किट्टू पूर्णा ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहा था। रसीपुरम ने अपना नॉवेल किट्टू पूर्णा को भेजा कि वो पढ़ सके और वहां अगर पॉसिबल हो तो किसी पब्लिशर को पढ़ा दे। तो किट्टू भाई ने बड़ा जुगाड़ू काम किया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के कुछ फायदे तो होते ही है, बड़े राइटर थिंकर का एक्सेस मिल सकता है। तो उसने वो मैन्यूस्क्रिप्ट किसी तरह ग्रैहम ग्रीन नाम के राइटर को पढ़ने को दे दिया। अच्छा, ग्रैहम ग्रीन बहुत कम उम्र में 1930s में ही एक बड़े राइटर के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके थे। उन्होंने एंटरटेनमेंट जॉनरा को रीडिफाइन किया था। भाई का ऑरा था, पब्लिशर उनकी बात टाल नहीं सकता था। लेकिन बड़ा आदमी होता है, चार तरह के काम होते हैं। अगर वो चाहता तो एक अजनबी के मैन्यूस्क्रिप्ट को नहीं पढ़ता, लेकिन उसने रसीपुरम के अनपब्लिश नॉवेल को पढ़ना शुरू किया और कुछ पन्नों बाद ही उसे समझ आ गया कि ये कोई छोटा राइटर नहीं है, इसकी अपनी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ने देखी ही नहीं। ग्रैहम ग्रीन ने तुरंत अपने पब्लिशर को कांटेक्ट किया और कहा कि इस किताब को तो आपको पब्लिश करना ही करना है, क्योंकि ये आने वाले समय का एक बड़ा राइटर है, आप कमाएंगे पैसे। और यहां से ग्रैहम ग्रीन और रसीपुरम की दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते और ये सिलसिला आने वाले कई सालों तक चलने वाला था। ग्रैहम ग्रीन ने एक और बहुत जरूरी काम किया, उन्होंने रसीपुरम से कहा कि भाई तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इंग्लिश रीडर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो पब्लिशिंग के लिए इसे जो है छोटा कर लो। और तब बना आर के नारायण, और 1935 में उनका पहला नॉवेल छपा स्वामी एंड फ्रेंड्स, और आज वही नाम इंडियन लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर के बड़े नामों में गिना जाता है। मालगुडी डेज से तो करोड़ों इंडियन का नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। ग्रैहम ग्रीन आर के नारायण के मेंटर और दोस्त रहे, लेकिन कई सालों तक ये दोनों मिले ही नहीं। आखिरकार 1956 में दोनों की पहली और आखिरी मुलाकात लंदन में होती है, और ये मुलाकात बहुत खास थी क्योंकि इस समय आर के नारायण अपने नॉवेल गाइड पर काम कर रहे थे और ग्रैहम ग्रीन ने उन्हें सजेशन दिया कि इस नॉवेल के अंत में राजू को मर जाना चाहिए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ग्रैहम ग्रीन ने लिखा भी है, आर के नारायण इज द नॉवेलिस्ट आई एडमायर मोस्ट। कभी कभी हिस्ट्री बड़े स्टेज पर नहीं बनती, कभी कभी दो राइटर्स के बीच चुपचाप लिखी गई चिट्ठियां भी दुनिया बदल देती है ना।

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।

0: फिल्मी गानों को अपनी जादुई धुनों से अमर करने वाले साजिंदे म्यूजिशियंस ता उम्र पहचान के मोहताज रह जाते हैं।
1: दम मारो दम।
0: किसी भी साज को बजाने में वो कितने भी सिद्धस्थ क्यों ना हो, उनका नाम कभी सामने नहीं आता। हजारों गानों को अपनी सुरीली धुनों में पिरोकर गुमनाम रह जाने का नाम है म्यूजिशियन। इन साजिंदों का नाम ना तो पर्दे पर आता है, ना ही इन्हें कोई क्रेडिट मिलता है। ऐसे ही एक फनकार साजिंदे के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है बरजोर लॉर्ड उर्फ बुजी लॉर्ड।
2: पहले प्रोड्यूसरों से झगड़ा करता था कि तुम लोग हेयर स्टाइलिस्ट, कपड़ा सीने वाले सबके नाम देता है, व्हाई डोंट यू राइट ऑर्केस्ट्रा बाय सीनियर म्यूजिशियंस एसोसिएशन।
0: बरजोर लॉर्ड जब ड्रम बजाते थे तो मानो उनके हाथों में करंट दौड़ रहा हो। उनकी रफ्तार और रिदम हैरान करने वाली होती थी। यही वजह है कि कई बार तो परफॉर्म करने के बाद उनका हाथ चेक किया जाता था कि कहीं उन्होंने अपने हाथों में कोई मशीन तो नहीं छुपा रखी है। ड्रम ही नहीं पूछी, लॉर्ड ने इतने सारे वाद्य यंत्रों में महारत हासिल की थी कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। ड्रम के अलावा कांगो, बोंगो, कास्टैनेट्स, घुंघरू, चीनी लकड़ी के ब्लॉक, वाइब्रोफोन, जाइलोफोन, ग्लॉकेनस्पील जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, ऑक्टोपैड और रोलैंड ड्रम मशीन भी बहुत खूबसूरती से बजाया। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने करीब करीब 15,000 गाने रिकॉर्ड किए। बरजोर लॉर्ड हिंदी फिल्म संगीत जगत का एक ऐसा जाना माना नाम है जिनकी ख्याति भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रही।
3: कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ।
0: शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना रहा हो जहां बुजी लॉर्ड ने अपने संगीत के साजों से लोगों का दिल ना जीता हो। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले, किशोर कुमार, मुकेश समेत तमाम सिंगर्स के साथ 2 दर्जन से ज्यादा देशों में परफॉर्म किया। बुजी लॉर्ड एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं, संगीत जिनकी रगों में बहता है, इसलिए पुराने दौर में लॉर्ड परिवार को लॉर्ड ऑफ रिदम यानी धुनों का भगवान कहा जाता था। इनके पिता कावस लॉर्ड तो तब से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे जब पहली बोलती फिल्म आलमारा बनी थी और भारतीय फिल्म संगीत में परक्शन इंस्ट्रूमेंट्स लाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। जबकि इनके भाई और मशहूर म्यूजिक अरेंजर केर्सी लॉर्ड को भारतीय फिल्म संगीत में डिजिटल इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी फिल्म संगीत में लॉर्ड्स परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। उनके बिना हिंदी फिल्म संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉर्ड्स परिवार के 3 सदस्य यानी पिता कावास और बेटे केर्सी और बुजी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में इतने माहिर थे कि गानों की रिकॉर्डिंग करते समय ये अक्सर वाद्य यंत्रों की अदला बदली कर लेते थे। इतना ही नहीं, कई रिकॉर्डिंग्स में तो एक ही सदस्य कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2 ऐसे अमर गीत हैं जिनमें इन तीनों ने यानी कावास, केरसी और बरजोर ने ज्यादातर साज बजाए हैं। इनमें एक गीत है मुझे जीने दो फिल्म का रात भी है कुछ भीगी भीगी, जबकि दूसरा अनपढ़ फिल्म का मशहूर गाना है इसी में प्यार की आबरू।

0: ये तो रहा लॉर्ड परिवार का छोटा सा परिचय, लेकिन आज इस पेशकश में मैं आपको बताऊंगी इस परिवार के फनकार बुझी लॉर्ड के बारे में विस्तार से। बुझी लॉर्ड की काबिलियत क्या थी, सबसे पहले इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। दरअसल फिल्मों के अलावा बुझी विदेशों में तमाम शो करते थे। 1966 में वेस्ट इंडीज का उनका पहला टूर 45 दिन का था। शो से पहले ऑर्गेनाइजर ने बुझी लॉर्ड से मुलाकात कर रेट को लेकर उनसे बात की और उन्हें 50 रुपए प्रति शो ऑफर किए। बुझी लॉर्ड ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखिए, अपने व्यस्त कार्यक्रम से मैं 45 दिन इस शो के लिए दे रहा हूँ, इसलिए प्रति शो 50 नहीं बल्कि 100 रुपए उन्हें मिलने चाहिए। अंत में ये नेगोसिएशन 75 रुपए प्रति शो पर आकर डन हुआ। लेकिन साथ में आयोजक ने जो कहा उसे सुनकर बुझी को बहुत बुरा लगा। जाते जाते उसने कह दिया कि तुम मुंबई में या भारत में लोकप्रिय हो सकते हो, पर वेस्ट इंडीज में तुम्हें कोई नहीं जानता। इसीलिए अगर रेट को लेकर बात नहीं बनती और तुम नहीं भी आते तो शो पर कोई असर नहीं होता। उसी पल बुझी लॉर्ड ने मन ही मन ये तय किया कि आज भले ही वेस्ट इंडीज में उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो परफॉर्म करके इंडिया वापस आ रहे होंगे तब वेस्ट इंडीज में सब उन्हें जान चुके होंगे। शो शुरू होने में 3 महीने का वक्त बाकी था। इस दौरान उन्होंने खुद को ड्रम प्रैक्टिस में डुबा दिया था। जब भी उन्हें वक्त मिलता वो ड्रम की प्रैक्टिस करते, अलग अलग तरह से हाथों को घुमाकर, कभी कभी तो तकिए को ही ड्रम बना लेते। खैर, जब बुझी शो के लिए वेस्ट इंडीज पहुंचे तो पहले ही दिन उनके परफॉर्मेंस से टहलका मच गया। अगले दिन वहां के अखबार उनकी तारीफों से भरे पड़े थे। फर्स्ट पेज पर उनकी फोटो के साथ आर्टिकल छपा था। उनकी तुलना अमेरिका के मशहूर ड्रमर जीन कृपा से की गई और बुझी को भारत का जीन कृपा कहा गया। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस के बाद इनकी बॉडी को चेक किया गया, ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने ड्रम बजाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल तो नहीं किया है, क्योंकि उनके हाथ बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। इसी का नतीजा था कि मोहम्मद रफी जैसे सिंगर्स के साथ साथ बुझी लॉर्ड का नाम भी वेस्ट इंडीज के संगीत प्रेमियों में बेहद लोकप्रिय हो गया था। बुझी लॉर्ड ने हिंदी सिनेमा के तमाम सदाबहार गीतों और अमर नगमों में अपनी सुरीली धुनों से जान फूंक दी। मगर अफसोस, वो बेमिसाल कलाकार जिनके ड्रम, कांगो, बोंगो, कैस्टनेट्स, घुंघरू, वाइब्राफोन, जाइलोफोन, ग्लॉकेनस्पील जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की धुनें सदियों तक दिलो दिमाग को सुकून देती रहेंगी, वो ताउम्र गुमनाम रह गए।
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
0: वो अजीम फनकार जो सदा संगीत के गुलशन को अपनी धुनों से रोशन करता रहा, उसने एक दिन संगीत की दुनिया की गंदी राजनीति से आजिज आकर अपने करियर के पीक पर रहते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और आज वो गुमनामी के बेजार अंधेरे में वक्त काट रहे हैं। कहा जाता है कि 1947 से 1987 के बीच जो गाने हिंदी फिल्मों में रिकॉर्ड किए गए उनमें हर तीसरे गाने में लॉर्ड परिवार के किसी न किसी सदस्य ने कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर प्ले किया है। आखिर क्यों बुझी लॉर्ड का संगीत की दुनिया से मोह भंग हो गया? यहाँ तक कि उन्होंने अपने वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स भी बेच दिए जिनसे उन्होंने अनगिनत अमर गाने रिकॉर्ड किए थे। इसकी वजह भी हैरान करने वाली है, जो इस पेशकश में आगे जानेंगे विस्तार से।
2: रात अकेली है।
0: अनेकों वाद्य यंत्रों के उस्ताद बुझी लॉर्ड ने संगीत की दुनिया छोड़कर कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, फिर भी उन्हें कौन सी दो बातों का बहुत अफसोस आज भी है। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं इनके संगीत की दुनिया में आने की कहानी।
2: रहना बीती जा।
0: बुजी लॉर्ड का जन्म 19 जुलाई 1941 को मुंबई में हुआ। इनके पिता और भाई पहले से ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और घर में भी हमेशा संगीत की ही बातें होती थीं। ऐसे माहौल में आमतौर पर बच्चे परिवार की बनाई परिपाटी पर ही चलते हैं, लेकिन बुजी के साथ ऐसा नहीं था। वो बचपन से ही मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनकर दुनिया भर में घूमना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें संगीत की दुनिया में ले आई। बुजी लॉर्ड को 10वीं में अच्छे नंबर नहीं मिले और आंखों पर नजर का चश्मा भी लग गया था। अब उनके पास संगीत की दुनिया में आने का विकल्प था, क्योंकि बचपन से वो भी कई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने ऑर्गन, पियानो, अकॉर्डियन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स सीखना शुरू कर दिया था। वो सुबह से शाम तक रियाज करते थे। इसके पीछे उनके पिता की सख्ती भी थी, जिन्होंने जोर देकर यह सिखाया कि ड्रम स्टिक्स हमेशा मजबूती से होल्ड करना चाहिए, ताकि तेजी से बजाते हुए वो हाथों से छूट ना जाए। फिल्मों में बुझी लॉर्ड की एंट्री भी अपने भाई केयरसी लॉर्ड की तरह और उन्हीं की वजह से हुई। एक बार जब बुझी के पिता कावास लॉर्ड बीमार हुए थे, तो उनकी जगह केयरसी लॉर्ड रिकॉर्डिंग पर गए थे। इसी तरह जब एक बार केयरसी लॉर्ड बीमार हुए, तो एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। तब शंकर जयकिशन को उनके म्यूजिक अरेंजर रहे दत्ताराम ने बुझी लॉर्ड का नाम सजेस्ट किया और इस तरह वो अपनी पहली फिल्म रिकॉर्डिंग पर गए।
1: झुमझुम झुमझुम झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला।
0: बरजोर लॉर्ड का करियर 1958 में 17 साल की उम्र में शुरू हुआ था। फिल्मों में जब एक बार बैकग्राउंड स्कोर पर काम करने का मौका मिला, तो आगे चलकर उन्होंने ड्रम, कांगो, बोंगो, कैस्टनेट, घुंघरू, वाइब्राफोन, जाइलोफोन, ग्लॉकेनस्पील के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, ऑक्टोपैड और रोलैंड ड्रम मशीनें भी बेहद सफाई से बजाई, क्योंकि अपने पिता की शागिर्दी में उन्होंने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर महारत हासिल कर ली थी।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ।
0: भारतीय ताल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुजी लॉर्ड ने दिल्ली घराने के इनाम खान साहब से तबला और किशन महाराज से नगाड़ा सीखा था। वहीं भारतीय रागों के लिए उन्होंने बाबू सिंह से हारमोनियम बजाना सीखा था। भारतीय तालों के साथ ही वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर अच्छी पकड़ के कारण बुजी लॉर्ड ने जैज और लैटिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैलेट इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर इंडियन स्टाइल की मेलोडीज के साथ अपनी एक अलग शैली बनाई, जिसकी वजह से वो 25 सालों तक मुंबई फिल्म संगीत में बतौर प्रोडक्शनिस्ट छाए रहे। बरजोर लॉर्ड हमेशा कहते थे कि गानों में सिंगर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ड्रम बजाते हुए वो हमेशा ध्यान रखते थे कि खाली स्पेस में इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, ताकि सिंगर डिस्टर्ब ना हो। पचास के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत करने वाले बुजी लॉर्ड ने 80 के दशक के मिड तक लगभग सभी दिग्गज संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें आर डी बर्मन के साथ उनका सबसे करीबी और लंबा जुड़ाव रहा। वो ज्यादातर ड्रम और वाइब्रोफोन बजाते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अलग अलग फिल्मी गानों में इतने वाद्य यंत्र बजाए कि उनकी गिनती करना मुश्किल है।
2: ऐसी